पांडाखंड भयो साढ़े सात पॉइंट दस मेगाहर्ज एफएम उज्जयंत तीन पांडावनर पाई तंगो आंग शिल्पी खाखलाइन जतन कहम तंगमायना हनै अजराव आव जतनी कहम ग्रं तंगनानी न बेलाय नांगकगो ते तंगना बनांगो आव जतनी फासिं खा कहम या फारै चिनि तिनिनि पांडानो सों जेंनानि थांनि दंलायो गाय सालब्रमनि हाइनो जों पैला खनाथ रोजाम तंगसा खनामानी बिसिंते चीनी पानदानो चीनी नालायन आबनी आगोल चिंग सालकामा पानदानी बेचे हाबलायन गे खनाई दंग अजराव नरक जतन एफ एम पानदानो फाइटिंग रोजाम तंगसा नरक जतनी बागई।